0: California. Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

बिराई क्यारे भंचु फिराए राय पादे रे माए न फोटो छिने राजा उसरे समा कई डोरे

छैन आउने जाने पाइन खबर पनि माइती छेउ के घर माइती छेउ के घर भयो धेरै दिन भगा छैन किन माइती छेउ के घर।

出天，我要万国国出天。你那宽度宽，咱们的比不如宽。भगवान को गर्छु ध्यान भगवान को गर्छु ध्यान।

गई दुबई बाके भयो परमालाई लाई गोडाला है कति राम्रो छ परमालाई लाई गोडाला डाँडो चटाई काटे जान्छु खुड्कालाई लाई छोडाउला।

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म पति प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 छ आषाढ कृष्ण पक्ष सन् 2026 जुलाई 12 तारिक आषाढ 28 गते आइतबार त्रयोदशी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरे।